0: नमस्कार प्रदर्शित तो आप सुन रहे हैं हमारी आर्थिक रेडियो कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम ताजिकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। मुख्य विषय है वर्ष 2024 के पहले छमाही में ताजिकिस्तान का विदेश व्यापार 6.48 अरब अमेरिका डॉलर तक पहुँचना। हम निर्यात में हुए उल्लेखनीय वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के विस्तार और विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों पर भी जानकारी देंगे। कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वर्ष 2024 के पहले छह मई में ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश व्यापार 4.820 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष का समान अवधि की तुलना में 40.2% या 2.2 अरब 28.9 मिलियन डॉलर तक अधिक है। ये जानकारी ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री अब्दुर्रहमानजोदा अब्दुर्रहमान सफरअली ने एक प्रेस वार्ता में दी। उनके अनुसार विदेशी व्यापार में ये वृद्धि आर्थिक सहयोग का विस्तार, निर्यात में बढ़ोतरी और ताजिकिस्तान के विदेशी साझेदारों के साथ व्यापारिक संबंधों के मजबूत होने का परिणाम है।
1: जमहूरी ताजिकिस्तान नतीजा हुई नजर रस नोएल गारी दास आज जुमला दर निमसोला यकमी सोली 2026
0: वर्ष 2024 के पहले छमाही में ताजिकिस्तान गणराज्य ने महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियां हासिल की। इस अवधि में सकल घरेलू उत्पादन की मात्रा 100.7 अरब सामान्य रही और वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 8.2% तक पहुंचे। ये वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में 14.1% तथा कृषि क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि के कारण संभव हुए। साथ ही सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन और निर्माण गतिविधियों के विस्तार ने भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवधि के दौरान औद्योगिक और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, निर्यात बढ़ा, निवेश आकर्षित हुआ तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया। ये परिणाम ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास तथा सरकारी के प्रभावी आर्थिक नीतियों का प्रमाण है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 के पहले छह महीनों में देश का निर्यात 1.580 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये वर्ष 2024 के समान अवधि की तुलना में 27.4% या 724.7 मिलियन डॉलर अधिक है, जो उत्पादन में वृद्धि और देश के निर्यात क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। इस अवधि में ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और भारत के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर 4 अंतर सरकारी संयुक्त आयोगों के बैठकें शामिल थे। इन बैठकों में व्यापार विस्तार, निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ के साथ सहयोग समिति और विकास आयोग उप समिति के 2 बैठकें भी आयोजित की गई। इन बैठकों में आर्थिक सहयोग के विस्तार, आर्थिक सुधारों के समर्थन, उद्यमिता के विकास तथा विदेश निवेश आकर्षित करने जैसे विषय पर विचार विमर्श हुआ।
1: وزارت این تحلیل و دورنمای نشان دهنده های ماکرو اقتصادی رشد صحه های واقعی اقتصادیات تنظیم سودای
0: منترالا کی گاتیویدیون کی موکی اکشترو می ویاپاگ آرتیک संकेतकों का विश्लेषण और पुनर्निर्माण अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों का विकास, विदेशी और घरेलू व्यापार का विनिमय, सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी, क्षेत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का विस्तार, सामाजिक क्षेत्रों का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा मुक्त आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय आर्थिक नीति में सुधार, निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने, घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने, ودیم یتیاک ویکا سرواستاک پردیس پرده مکتاک شمتا برهانه تا تا سرکاری رجنیتیو اور ویکاس کرکراموکی پراباوی کرن ویان کلی نیرارتر آوشاک خدم اوت هرائه. ارتیک ویکاس اور ویپار منترالاکی دیکاریونه که اکی ویدیشه ویپار میوریتی اوران ترشا سایوکا ویستار رشت رواستاکو مضبوط کرنه نئی روزگار سراجیت کرنه گریل اوت پا دوکی پرتیس پرده مکتاب برهانه تا تا دیش که ستاد ویکاس کلی نکولا دهار پردهان کرنگاه نیوز و شویره ریدیو اوزه توجیه.

याद दिलाते कि आप रेडियो आवाजी ताजिकी हिंदी भाको सुन रहे हैं। इस समय हिंदी भाके कार्यक्रमों के दौरान आपके साथ है हम नुशफरीन उलीमवा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूर इस्माइल।

जी ये है कमली गाना जो धूम तीन फिल्म में सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया आप गाने के बारे में विस्तार से बात करने से पहले इस मूवी के बारे में बात करेंगे

धूम तीन 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने लिखा और निर्देशित किया और इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है जिन्होंने कहानी का सह लेखन किया था। इसमें आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैथरीना कैफ, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और ताब्रेत बैठेल है। ये धूम श्रृंखला की अंतिम किस्म है और धूम 2004 और धूम 2 2006 की अगली कड़ी है। सन 2003 में धूम फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार में थे। इसके अलावा विपाशा बासु और आयशा देओल भी फिल्म में खास किरदार निभा रही थी। इसके बाद साल 2006 में धूम 2 बनी जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, इसके अलावा ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय मुख्य किरदार में नजर आए। 7 साल बाद धूम सीरीज की तीसरी फिल्म धूम 3 रिलीज हुई जिसमें एक बार फिर से अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने उन्हीं पुराने दो किरदारों में नजर आए और आमिर खान ने इस बार फिल्म में विलेन का किरदार निभाया।

एक्शन फिल्म धूम तीन के कामली लिरिक्स को सुनिधि चौहान ने गाया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और प्रीतम चक्रवर्ती ने इसकी धुन तैयार की है। कमली गाना पंजाबी गाना है। कमली के अलावा इस फिल्म में मलंग, तू ही जुनून, धूम मचाले धूम, बंदे हैं हम उसके गाने शामिल हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए।

खुशामरी गाना में कैटरीना कैफ का नृत्य ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद हिंदुस्तान और दूसरे देशों के नृत्यकारों ने इस गाने में नृत्य का मंचन करने और कैटरीना के डांस को दोहराने शुरू किया। इस गाने को पेश करने से कई साल बीत गए, लेकिन अब ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी इस गाने को पेश करते हैं और विभिन्न देशों के गायक इस गाने को गाते हैं। इस तरह हमारे देश के मशहूर गायिका नोज़िया करोमाथोलो ने अपने एक कॉन्सर्ट में इस गाने को दर्शकों के लिए पेश किया, जो सभी हिंदी गानों के प्रेमियों के दिल में बस गया।

बता दें कि ये नोजिया का पहला हिंदी गाना नहीं है. नोजिया को न केवल ताजिकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अच्छी तरह जानते हैं और उसकी हिंदी और ताजिक गाने सुनते हैं. नोजिया हिंदुस्तानी कलाकारों से सहयोग करती है और अक्सर अपने फैंस के लिए हिंदी गाने पेश करती है.

प्यारे श्रोताओं, धूम तीन फिल्म के कमले गाने के हिंदी और ताजिक गायकों के गाने के वर्षन इस प्रोग्राम में आपके लिए पेश किया गया। इस समय आपके साथ है हम नुशो फरीन ओलीमवा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूरी इस्माइल। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस गाने को सुनकर आनंद लीजिए।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा, खुद बया हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं। आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो आवाज़ ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। अभी आपके साथ है शोएरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ोवा दौलत। इस घंटे के मुख्य खबर है। तजिकिस्तान के राष्ट्रपति मलिर रहमान मंगोलिया की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए। तजिकिस्तान में बीज उत्पादन क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई है। दुशम्बे में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उद्योग फोरम आयोजित किया जाएगा। तजिकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंरचना संघ के बीच सहयोग का विस्तार होगा। अगस्त में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टॉप 35 विश्व साझेदार आयोजित होगी और अन्य समाचार हिंदी भाषा को सुन सकते हैं। जुलाई को तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्र का नेता इमोमाली रहमान राजकीय यात्रा पर मंगोलिया के लिए रवाना हुए। दुशम्बे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति इमोमाली रहमान को तजिकिस्तान की राष्ट्रीय सभा मजलिस मिले के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के प्रथम उप प्रमुख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विदा दिया। इस यात्रा में राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री, विदेश संबंधों के मामलों पर राष्ट्रपति के सहायक तथा विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित सरकारी संस्थानों के प्रमुख भी शामिल है। तजिकिस्तान गणराज्य में बीज उत्पादन के विकास से जुड़े मुद्दों पर तजिकिस्तान सरकार के अधीन खाद्य सुरक्षा समिति के नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में बिजली की गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक तकनीकों को अपनाने, कानूनी एवं नियामक ढांचे को मजबूत करने तथा संबंधित संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बीज उत्पादन क्षेत्र का विकास, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में दोनों पक्षों ने कृषि क्षेत्र के स्थायी विकास के लिए सहयोग का विस्तार करने और संयुक्त परियोजना को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने बीज उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए लाभदायक सहयोग जारी रखने और आपसी संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराए है। न्यूयॉर्क में तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के अधीन नवाचार एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी के निदेशक खुर्शीद मिर्ज़ो ने तजिक आईटी प्रवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक विदेश रहने वाले तजिक विशेषज्ञों के ज्ञान अनुभव और पेशेवर क्षमता को तजिकिस्तान के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी डिजिटल व्यवस्था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल अवसंरचना के विकास में शामिल करने पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने अनुभवों के आदान प्रदान उच्च योग्य विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और नवाचार पहलुओं को समर्थन देने पर भी विचार साझा किया। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखने के प्रतिबद्धता व्यक्त की। बीस इक्कीस अगस्त को तजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उद्योग फोरम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी तजिकिस्तान के उद्योग और नई प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हवाले से दी गई है। स्रोतों के अनुसार फोरम की तैयारी पर उद्योग और नई प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उपमंत्री बख्तियोर सफरजोदा और तजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि अगस्त से हरियत यूनियन के बीच हुए बैठक में चर्चा की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने खाद्य उद्योग के विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से संबंधित सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। फोरम की तैयारियों के तहत की एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में भागीदारी के महत्व पर विशेष बल दिया गया, ताकि फोरम के विषय वस्तु को समृद्ध बनाना जा सके और भविष्य में सहयोग को और मजबूत किया जा सके। तजिकिस्तान के स्वतंत्रता के 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त महीने में दुशंबे में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टॉप 35 विश्वसनीय साझेदार आयोजित किए जाएंगे। ये प्रौद्योगिकी तजिकिस्तान सरकार के सहयोग से आयोजित होगी, जिसमें उद्यमी कंपनियां, औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा अन्य सेवा संस्थान भाग लेंगे। इसका उद्देश्य विश्वसनीय कंपनियों की पहचान करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, विदेश निवेश आकर्षित करना तथा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के गुणवत्ता में सुधार करना है। प्यारी सुनने वालों, ये था सही समाचार। हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: नमस्कार प्रदर्शित तो आप सुन रहे हैं हमारी आर्थिक रेडियो कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम ताजिकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। मुख्य विषय है वर्ष 2024 के पहले छमाही में ताजिकिस्तान का विदेश व्यापार 4.48 अरब अमेरिका डॉलर तक पहुँचना। हम निर्यात में हुए उल्लेखनीय वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के विस्तार और विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों पर भी जानकारी देंगे। कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वर्ष 2024 के पहले छमाही में ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश व्यापार 4 अरब 820 मिलियन अमेरिका डॉलर तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष का समान अवधि की तुलना में 40.2% या 2 अरब 28.9 मिलियन डॉलर तक अधिक है। ये जानकारी ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री अब्दुर्रहमानजोदा अब्दुर्रहमान सफरअली ने एक प्रेस वार्ता में दी। उनके अनुसार विदेशी व्यापार में ये वृद्धि आर्थिक सहयोग का विस्तार, निर्यात में बढ़ोतरी और ताजिकिस्तान के विदेशी साझेदारों के साथ व्यापारिक संबंधों के मजबूत होने का परिणाम है।
1: جمهوری تاجیکستان با نتیجه های نظررس نوئل گردیده است. از جمله در نیم سال یکم سال 2026
0: वर्ष 2024 के पहले छमाही में ताजिकिस्तान गणराज्य ने महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियां हासिल की। इस अवधि में सकल घरेलू उत्पादन की मात्रा 100.7 अरब सामान्य रही और वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 8.2% तक पहुंचे। ये वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में 14.1% तथा कृषि क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि के कारण संभव हुए। साथ ही सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन और निर्माण गतिविधियों के विस्तार ने भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवधि के दौरान औद्योगिक और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, निर्यात बढ़ा, निवेश आकर्षित हुआ तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया। ये परिणाम ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास तथा सरकार के प्रभावी आर्थिक नीतियों का प्रमाण है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 के पहले छह महीनों में देश का निर्यात 1.580 अरब अमेरिका डॉलर तक पहुंच गया। ये वर्ष 2024 के समान अवधि की तुलना में 27.4% या 724.7 मिलियन डॉलर अधिक है, जो उत्पादन में वृद्धि और देश के निर्यात क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। इस अवधि में ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और भारत के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर 4 अंतर सरकारी संयुक्त आयोगों के बैठकें शामिल थे। इन बैठकों में व्यापार विस्तार, निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इसके अंतरिक्त यूरोपीय संघ के साथ सहयोग समिति और विकास आयोग उप समिति के 2 बैठकें भी आयोजित की गई। इन बैठकों में आर्थिक सहयोग के विस्तार, आर्थिक सुधारों के समर्थन, उद्यमिता के विकास तथा विदेश निवेश आकर्षित करने जैसे विषय पर विचार विमर्श हुआ।
1: وزارت این تحلیل و دورنمای نشان دهنده های ماکرو اقتصادی رشد صفحه های واقعی اقتصادیات تنظیم سودای
0: منترال که گتی ویدیون که موکی اکشترو می ویاپاگ آرتیک संकेतकों का विश्लेषण और पुनर्निर्माण अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों का विकास, विदेशी और घरेलू व्यापार का विनिमय, सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी, क्षेत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का विस्तार, सामाजिक क्षेत्रों का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा मुक्त आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय आर्थिक नीति में सुधार, निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने, घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता के विकास, अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता बढ़ाने तथा सरकारी रणनीतियों और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठा रहा है। هرچیک وی کاسور وی اپر منترال اکیه دیکاریونه که اکیه وی دیشه وی اپر میوریتی اوران ترشه سایو که ویستار رشته روستا کو مضبوط کرنه نهی روزگار سراجید کرنه گریلو اتپا دو که پرتیز پردد مکتب برهنه تا تا دیش که ستاد وی کاس که لینو کولا دهر پردهن کرنگه نیوز و شویره ریدیو اوزه توجیه.

याद दिलाते कि आप रेडियो आवाजी ताजिकी हिंदी भा को सुन रहे हैं। इस समय हिंदी भा के कार्यक्रमों के दौरान आपके साथ है हम नुशफरीन उलीमवा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूर इस्माइल।

जैसे आपको पिछले प्रोग्रामों से पता होगा, हमारे खंड से मशहूर गानों के बारे में कार्यक्रम पेश किया जाता है। आज भी हम आपको एक गाने के बारे में बताने वाले हैं, जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि उसके बाहर भी मशहूर हो गया और विभिन्न देशों के गायकों द्वारा गाया गया। आप सुनते हैं ये कौन सा गाना है।

जी ये है कमली गाना जो धूम तीन फिल्म में सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया। आप गाने के बारे में विस्तार से बात करने से पहले इस मूवी के बारे में बात करेंगे।

धूम तीन 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्या ने लिखा और निर्देशित किया और इसका निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है जिन्होंने कहा

बनाने का सह लेखन किया था। इसमें आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैथरीना कैफ, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और ताबरेत बैठेल है। ये धूम श्रृंखला की अंतिम किस्म है और धूम 2004 और धूम 2 2006 की अगली कड़ी है। सन 2003 में धूम फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जॉन अब्राहम मुखिया किरदार में थे। इसके अलावा विपाशा बासु और आयशा देओल भी फिल्म में खास किरदार निभा रही थी। इसके बाद साल 2006 में धूम 2 बनी जिसमें अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, इसके अलावा ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय मुखिया किरदार में नजर आए। 7 साल बाद धूम सीरीज की तीसरी फिल्म धूम 3 रिलीज हुई जिसमें एक बार फिर से अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने उन्हीं पुराने दो किरदारों में नजर आए और आमिर खान ने इस बार फिल्म में विलेन का किरदार निभाया।

एक्शन फिल्म धूम तीन के कामली लिरिक्स को सुनिधि चौहान ने गाया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और प्रीतम चक्रवर्ती ने इसकी धुन तैयार की है। कमली गाना पंजाबी गाना है। कमली के अलावा इस फिल्म में मलंग, तू ही जुनून, धूम मचाले धूम, बंदे हैं हम उसके गाने शामिल हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए।

कमरे गाना में कैटरीना कैफ का नृत्य ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद हिंदुस्तान और दूसरे देशों के नृत्यकारों ने इस गाने में नृत्य का मंचन करने और कैटरीना के डांस को दोहराने शुरू किया। इस गाने को पेश करने से कई साल बीत गए, लेकिन अब ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी इस गाने को पेश करते हैं और विभिन्न देशों के गायक इस गाने को गाते हैं। इस तरह हमारे देश के मशहूर गायिका नोज़िया करोमाथोलो ने अपने एक कॉन्सर्ट में इस गाने को दर्शकों के लिए पेश किया, जो सभी हिंदी गानों के प्रेमियों के दिल में बस गया।

बता दे कि ये नोजिया का पहला हिंदी गाना नहीं है. नोजिया को न केवल ताजिकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अच्छी तरह जानते हैं और उसकी हिंदी और ताजिक गाने सुनते हैं. नोजिया हिंदुस्तानी कलाकारों से सहयोग करती है और अक्सर अपने फैंस के लिए हिंदी गाने पेश करती है.

प्यारे श्रोताओं, धूम तीन फिल्म के कमले गाने के हिंदी और ताजिक गायकों के गाने के वर्षन इस प्रोग्राम में आपके लिए पेश किया गया। इस समय आपके साथ है हम नुशो फरीन ओलीमवा और इस प्रोग्राम का निदेशक अबू मंसूरी इस्माइल। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस गाने को सुनकर आनंद लीजिए।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा, खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।